हम अकश्वरुं तिमन रसकलांगे एनाय मगु देखेवी में एई एना शुकुरुवेरी उमट्ठके नूनी एना देखुलुवेरी काफिरु उमट्ठके।

एवरें गा फेरा लव्वान थे आदि रिहि उड़ा थकुं एवरें गहना अलव्वान थे आदि एवरेंगे वेरी रसकलांगे एवरें साफ तौहिर बुय में बोन दिव्वान थे।

हा मक्काश्वरुं एक कुरब्बा फावा मन तिक्ककुं तिमन रसखलांगे इंसाना हिद्दवी में ऐ एना इम्तिहान कुरब्बु मट्टके फाहे खम फतंग इवे लोला फेन्न मीह कमगा तिमन रसखलांगे एना लेवी में।